अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

ताली ताक झुम ताक ताली ताक झुम ताक झाला आंब ताक झुक ताक ताली गेन तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता झन झाले कोकु तारी ताक तारी गेटे ताक तारी ता जग तारी ता झन झाले कोकु तारी ताक तारी गेटे झम तारी

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

सभी सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आप सभी सुनने वालों को अदाब अर्ज और नमस्कार। मुझे यकीन है कि कितने सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाए, मजे लीजिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ आशा भोसले की गाई हुई ये भजन से।

अमीरों की परमेश्वर रूहानी अंदाज में पेश थी ये भक्ति गीत। संगीत देने वाले थे श्री रामचंद्र और महान कवि प्रदीप का गीत रचना था। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाथ शरीफ पेश है। महेंद्र कौर की आवाज में तर्स है, नूरे नबी से रोशन है सीन।

छाया गंगुली से पेश थी ये गजल शायर मखदूम मोहियुद्दीन का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, उस्ताद गुलाम अली से पेश है ये गजल।

दिल की बात कहीं नहीं जाती, बेगम अख्तर की आवाज़ में पेश थी ये गज़ल और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। फिर किसी से बातें वो मुलाकातें अब नहीं होंगी, रातें तो होंगी पर वो रातें अब नहीं होंगी। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुड़ते हो गई मुस्कुराए।

मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। जी हाँ, याद आई ना ये किसकी आवाज थी। फिर भी बतला देते हैं, गाने वाले थे शमशाद बेगम और उमा देवी। उमा देवी जो फिल्मों में मजाकिया रोल अदा करती थी और टुनटुन का नाम से मशहूर थी। अगला जुगल गीत आइए सुने, इस बार शमशाद बेगम की साथ सुर से सुर मिला रहे हैं मोहम्मद रफी साहब।

पर क्या थी गम खाना पड़ेगा। मौसिकार नौशाद अली की मौसिकी और शकील बदायूनी का कलाम था। गीता दत्त शोही आवाज में क्या सुनाएंगी, आइए सुनें।

फिल्म टॉवर हाउस का नगमा पेश था और ये डुएट अजीत और शाकिला पर फिल्माया गया था। सदियों से इस दुनिया में चल रही है मोहब्बत की दास्तान। दुनिया की दो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग न जाने कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से, दिलों की दौड़ जोड़ती है और बन जाती है मोहब्बत की एक नई दास्तान। ये सिलसिला है प्यार का, जिसका हिस्सा है हम और तुम।

एक पल जो मिला है तुमको जीने के लिए, खूबसूरत अंदाज में पेश था ये सूफियाना कलाम CH आत्मा की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत। आप प्रोग्राम को सुनते जाना, अभी थोड़ी देर में फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

सुनने वालों को प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको फिल्म ससुराल में से ये लोकप्रिय गीत सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे।

अभी आपने फिल्म ससुराल में से ये गीत सुना और ये गीत महान अदाकार राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था, जिसके बारे में हमने कई हफ्तों से बयान कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि राजेंद्र जी अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप गए थे छुट्टी मनाने के लिए। राजेंद्र ने आने जाने का फ्लाइट पुख्ता मतलब बफेस्ता कर चुका था और वापसी का फ्लाइट 24 अगस्त का था। ये भी बतलाई थी कि राजेंद्र ने अचानक फैसला किया 23 अगस्त को वापस जाने को। शुक्ला बीबी ने जब सवाल किया क्यों हमें 23 अगस्त को बॉम्बे पहुंचना है, तो राजेंद्र ने कहा बाद में हम बतलाएंगे। शुक्ला बीबी बेचैन थी, घबराहट महसूस कर रही थी, तो याद आई कि 23 अगस्त अदाकारा शायरा बानू का सालगिरह का दिन है। अदाकारा शायरा बानू रितेंद्र जी से कहा था कि आप जिस जगह पर होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरे सालगिरह का दिन तुम्हें मेरे साथ सालगिरह का जश्न मनाना है। अदाकारा शायरा बानू ने फिल्मी दुनिया का सभी जाने माने कलाकारों को दावत दिया था सालगिरह का दिन साथ मनाने को। हर एक मेहमान अंदर जाने से पहले इस्तेमाल किया गया गुलाब की पानी से, रोज वाटर से, और फिर सामने खड़े थे राजेंद्र कुमार अपने बीवी शुक्ला के साथ। सभी के नज़र इन दोनों मियां बीवी राजेंद्र जी पर था। शायरा बानू ने अपने सब मेहमान को छोड़कर राजेंद्र और शुक्ला बीबी को मेहमान नवाजी किया और फिर शुक्ला बीबी से सवाल किया कैसे थी यूरोप का सफ़र, तो शुक्ला बीबी ने कहा बहुत शानदार सफ़र था, इसलिए क्योंकि मेरी मियाँ और बच्चे साथ था। शायरा बानू ने शुक्ला बीबी से सवाल पर सवाल करती गई और शुक्ला बीबी अपने मियाँ राजेंद्र जी का हाथ में हाथ डालते, चेहरे पर हल्का सा मुस्कान के साथ जवाब देती गई और ये भी कहा कि उसे और मियाँ को स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा पसंद था। सामने खड़े थे शायरा बानू की माँ नसीम बानू, एक दौर की मकबूल अदाकारा, और शायरा बानू की नानी माँ। दोनों सुन रहे थे शायरा बानू और शुक्ला बीवी की बातचीत। दोनों को एहसास थी और घबराए हुए, क्योंकि अफवाहें थे कि राजेंद्र कुमार और शायरा बानू में अदाकारी के बढ़कर और रिश्ता था, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। राजेंद्र ने कहा जी हाँ, एक पल के लिए हो गया था मैं कमज़ोर, शायरा बानू थी दिल और दिमाग से हसीन। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये गीत फिल्म झुक गया आसमान में से लिया है।

इस गीत से पहले आपने सुना कि शायरा बानो की माँ नसीम बानो और शायरा जी की नानी माँ को मालूम था कि बेटी शायरा राजेंद्र से शादी करना चाहती थी और ये भी जानते थे कि बेटी शायरा बचपन से ही अदाकार दिलीप कुमार को पसंद करती थी, पर माँ और नानी ने सोचा था ये नामुमकिन है, दोनों का उम्र में 22 साल का फर्क है। पर बात अब कुछ और थी, इसलिए नसीम बानो और नानी माँ फैसला किए अदाकार दिलीप कुमार को इस जश्न में शामिल होने को। दोनों ने दिलीप कुमार को दावत दिया बेटी शायरा की सालगिरह की जश्न में हाजिर होने को, लेकिन दिलीप साहब को पहले से बतला दिए थे कि अफवाहें हैं चारों तरफ कि राजेंद्र कुमार और शायरा बानो शादी करना चाहते हैं। माँ और नानी माँ दिलीप साहब से कहा कि शायरा आपको बचपन से ही पसंद करती थी, पर उसे संजीदगी से नहीं लिया था। पर हालात अब और कुछ और थी। राजेंद्र शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप और धर्म मजहब की दीवार जो था। लोग क्या कहेंगे, मेहमान जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ राजेंद्र की बीवी शुक्ला के साथ हाथ में हाथ डाले सभी से घुल मिल कर बातें कर रहे थे। शुक्ला बीबी को एहसास थी कि किस दौर से मियाँ गुजर रहा है और सोचा वो अपनी मियाँ को इस मुश्किल की घड़ी में साथ देंगे। अगले ही दिन सुबह की अखबार में मोटी मोटी अक्षरों में लिखा था, द माइटी एक्टर दिलीप कुमार की मंगनी हुई है अदाकारा शायरा बानो के साथ। इस खबर से राजेंद्र भी खुश था, अपने बीवी से कहा कि खुदा उनकी दुआ कबूल किया और कहा कि वो अक्सर नसीम बानो से कहता था, देखना एक दिन आपकी बेटी की शादी एक बेहतरीन मकबूल शख्स से होगा। इसी दौरान राजेंद्र कुमार और शायरा बानो की फिल्म झुक गया आसमान को पूरा करना था और ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग दार्जिलिंग में था, तो बीबी शुक्ला ने फैसला किया था अक्सर अपने मियाँ के साथ जाने को। और शायरा बानो के साथ थे उनकी माँ नसीम बानो और मंगेतर अदाकार दिलीप कुमार। अवाम का कहना था कि फिल्म झुक गया आसमान में मंगनी के बाद का किरदार में वो जज्बा नहीं था जो मंगनी से पहले था। इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार और शायरा बानो एक साथ कभी नहीं काम किए। फिल्म झुक गया आसमान नेहत सेफन शस्तख में रिलीज हुआ था, पर अवाम फर्क महसूस किया। पहले आइए सुने ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म गीत में से ये गीत पेश था। इस फिल्म में राजेंद्र के साथ ही अदाकारा माला सिन्हा। फिल्म झुक गया आसमान के बाद आई फिल्म पालकी, जिसमें राजेंद्र जी के साथ ही अदाकारा वहीदा रहमान। राजेंद्र का किरदार एक शायर का था और उसे प्यार हो जाता है मेहरून निशा से, जो वहीदा रहमान का किरदार था। फिल्म पालकी के सभी गाने कमाल का था और मौसिका नौशाद अली की मौसिकी भी इसमें चार चांद लगाया। दो महान कलाकारों को होते हुए भी अवाम इस फिल्म को नापसंद किया। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने मोहम्मद रफी साहब से आवाज में ये नगमा।

जी हाँ, ये फिल्म द ट्रेन का गीत है जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। फिल्म द ट्रेन से पहले राजेश खन्ना ने दो चार फिल्मों में काम कर चुके थे। उनकी फिल्में आखिरी खत, रास, औरत, मेहनत करने के बावजूद फ्लॉप हुए, पर राजेंद्र ने राजेश खन्ना का किरदार परख लिया था, इसलिए वो पूरा एतमाद के साथ राजेश खन्ना को मौका दिया फिल्म द ट्रेन में नंदा के साथ काम करने को। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना पीछे मुड़कर देखा नहीं, आगे बढ़ते गए और राजेंद्र कुमार का पहला रोज मूवी प्रोडक्शन कामयाब हुआ। राजेंद्र जी फिल्म धरती में वहीदा रहमान के साथ काम कर रहा था, जिसमें डायरेक्टिंग कर रहा था डायरेक्टर श्रीधर। एक रोज श्रीधर ने राजेंद्र से कहा, सर आप 40 साल का लगता नहीं, ये क्या राज है, आप पहले से और जवान लगता है। थैंक यू सर, पर मुझे लगता है जैसे मैंने अभी एक्टिंग शुरू किया है। राजेंद्र ने अपने आप को गौर से आईना में देख रहा था, पर अपने आप से कहा कि हकीकत तो ये है कि वो अब 40 साल का हो गया था। राजेंद्र ने कहा, इस उम्र में कलाकारों जिसके पास पैसा होते हैं तो हॉर्स रेस में लगाते हैं या ताश खेलते हैं और आगे पीछे चमचा घूमते रहते हैं, पर वो अपने शानदार बंगला में खर्च करता है और मोटर कार जिसका नाम लोग नहीं सुना होगा पहले, और कई बार अपने बीवी बच्चों के साथ दुनिया घूमा। कहने दो जो लोग कहते हैं, पार्टीज में शामिल होना उसे पसंद नहीं था, पैसा फजूल खर्च करना उनकी फितरत में नहीं था। और अभी 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, फिल्म धरती वहीदा रहमान के साथ, फिल्म गंवार वैजंती माला के साथ, और ये फिल्म राजेंद्र कुमार का भाई नरेश कुमार का पेशकश था। फिल्म गीत माला सिन्हा के साथ और चौथा फिल्म थी महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर और चौथा फिल्म थी महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर। कहानी आज मैं यहीं पर रोक देती हूँ। फिल्म गीत में से ये गीत सुनवाती हूँ, जिसमें महान बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बजाई हुई बांसुरी है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान अदाकार राजेंद्र कुमार के बारे में बातें की। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना।

फिल्म जूली में से ये गीत लिया है। आनंद बख्शी का लिखा तर्ज था, संगीत देने वाले थे राजेश रोशन। अब आइए सुने गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

शेराना अंदाज में आपने अभी ये दो गाना सुना। उम्मीद है कि आप इन नगमों से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने मन्ना डे से अगला गीत।

0: रामनु दिल दे देना ठिकाना, मेरे राही चलते जाना।
1: लहरों में छुपा किनारा मन्ना डे से आपने अभी ये गीत सुना। अब आई सुने फिल्म पाकीज़ा में से अगला गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिन, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे, रात अधूरी।

फिल्म मृत्यु दंत का नगमा पेश था महान शायर जावेद अख्तर का कलाम था मौसिकी आनंद मिलेन की, आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। समय तो धीरे धीरे चल मिलकर सुनाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार।

समय तो धीरे धीरे चल, अमर गीत आपने अभी सुना। संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन और गीत रचना राज कवि तुलसी का। कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं।

राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत में पेश था ये नगमा बोल था आनंद बख्शी का। मैं जिस दिन देख लूं तुमको मुझे महसूस होता है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते।

फिल्म आशिक में से ये गीत पेश था। संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे और शायर शैलेंद्र का गीत रचना था। रोमानी अंदाज में आइए सुने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म उमंग का नगमा आपने अभी आशा भोसले से सुना। गीतकार अनजान का तर्ज, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनने वाले ये प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

वहां नगमा पेश था तलत महमूद की आवाज में। अब आइए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहिब से ये दो गाना।

फिल्म पारस मनी से ये दो गाना लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कलाम था असद भोपाली का, संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुने मुकेश से अगला गीत।

और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। एश किंग एंड जोनिता गांधी, इन दोनों से आप गीत को सुने। और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा उजाला.nl।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है Fiyan De Ab Plus तोर घर में तोरो तुम्हें तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अब ए प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: you are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
2: फिल्म वारदात से सुर का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और उषा मंगेशकर की आवाज में मैं हूं शहीद गुलजार नमस्कार अस्सलाम वालेकुम कुछ देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं लेकर कुछ मिले जुले संगीत और ऐसे में हो जाए सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है अरे जालिम तूने भी किया ऐसा कोई काम किया है

सच्चे के तूने भी किया ऐसा कोई काम किया है। सुरो कमाचा मोहम्मद रफी साहब और उषा मंगेशकर की आवाज। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो। तू जाने है तो मिले जुले संगीत में हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शंस सुनाने वाले हैं। और ऐसे में ये हो जाए ये जो हल्का हल्का जरूर है रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते एमसेडम में आप डायल कर सकते हैं 02-409-0807 पर। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में नेहा कक्कड़ की आवाज़।

वाह क्या लिरिक्स है, ये जो हल्का हल्का जरूर है मैंने खुद तुझ पे लुटा दिया। जुआर के जरिए और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं और ऐसे में हो जाए किशोर दा की आवाज़ सामने, ये कौन आया मैं तो नहीं हूँ।

सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज़ में आप सिलेक्शन सुने हैं और इस संगीत की दुनिया में सुरीली माहौल में आइए मिलकर सुनते हैं एक रोमानी नगमा। बेशक नामक फिल्म से सन 1981 का फिल्म बेशक से आइए मिलकर सुनते हैं प्रीतम तुम मेरी रहोगी सदा ये वादा करो।

सन 1981 का फिल्म फिल्म साहस से आइए मिलकर सुनते हैं द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज़ में. सारे जमाने में बस एक दीवाना तो और एक हसीना हूँ मैं. हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से. आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना. इट्स यू आर उजाला रेडियो. तू जाने है तो

0: द मेलोड क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज में सारे जमाने में बस एक दीवाना तू और एक हसीना हूं मैं
1: उजाला रेडियो रेडियो तू जाने है तोख तोख

0: फिल्म का नाम प्यार किए जा, सन 1966 का फिल्म, 1966 का फिल्म प्यार किए जा। दिल हमने दे दिया, क्या तुमने भी दिल दे दिया? दिल हमने दे दिया। फिल्म का नाम प्यार किए जा। स्टेशन है यू आर।
1: हमने दे दिया,
2: क्यों
1: तुमने ले लिया?
2: अरे
1: हमने क्या किया,
0: क्या कर ले?
2: सोच

मजे दार सरक्षण आपकी खिदमत में अर्ज की गई है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और हसीनो के पुजारी किशोर कुमार की आवाज मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में यू आर के जरिए हम आपको और भी अच्छे अच्छे सरक्षण सुनाने वाले हैं। नींद चुरा के रातों में अब रात की नींद चुरा लिए तक रात भर का करिए। मजा आप लुटे ही रहना उजाला रेडियो से।

0: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।
1: हाय हाय क्या बात, सुनी थी चौहान की आवाज, फिल्म का नाम फन्ने खान।

0: Music. Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
1: You are. You are.
2: The most sensational and
3: the best.
4: The best.
0: Romantic mood में आइए अब सुनते हैं वेरी रोमांटिक सॉन्ग सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज. फिल्म का नाम स्वयंवर. मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें.

Disco King Bapi Lahiri के आवाज में आप अभी सुने हैं डिस्को बादशाह। नाचे कोई गाए कोई हमसे अच्छा। युवा उजाला रेडियो का पैगाम है, हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

सन् 1988 का फिल्म 1988 का फिल्म मुलजिम से ताई ताई। मेरे ख्याल से ये सलमा आगा की आवाज में है। ताई ताई, बाय बाय, हम आपसे फिर मिलते हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार, सुनते रहना और सुनते ही जाना।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

तू सो जाए, मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो। क्या बात है, धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी ताड़ आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिन कांतोर उरन 020 409 08।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष्ट करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय
1: की कहे, की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ
1: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी है एक राजकुमारी जा घोड़ा ले आ

0: लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात। ले ले, बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

दिल खिले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाइए और गाइए। उजाला रेडियो पर आप सुने

तुम मिले तो दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, मुझे जीने को और क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी, उजाला रेडियो पर।

मैंने सोचा ना था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दे दियो, दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों के साथ जो कि सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बना रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और भी पसंद

जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। एल्बम बेवफा सनम, गाने वाले अनुराधा पौडवाल और सुरेश वडकर से गीत को आप सुने, पहला गीत आज का प्रोग्राम दर्द दिल में। और अब हिस्सा लेंगे मुकेश जी।

वफा जिनसे की बेवफा हो गई है। मुकेश जी की आवाज फिल्म प्यार का सागर 1961 नेहंतिन एन जस्तक के फिल्म रवि म्यूजिक डायरेक्टर और इस फिल्म में काम किए मीना कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार।

छिड़े हुए परदेसी लता जी की आवाज में आप सुने 1949 नेहंदिन नेहनन फिरतख की फिल्म बरसात का गीत शंकर और जय किशन संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए उन दिनों राज कपूर के साथ नरगिस जी। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल।

जाने कैसे बीतेगी ये बरसाते, गीत आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में। 1981-89 के फिल्म बसेरा से निकाला हुआ राहुल देव बर्मन संगीत से सजाए, और इस फिल्म में काम किए शशि कपूर के साथ राखी, रेखा और पूनम ढिल्लन।

उजाले और मुझको दिया अंधेरा। मुकेश जी की आवाज 1976 ने खंतिन जैसन जीफन तक के फिल्म संतान का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार थे और इस फिल्म में काम किए जितेंद्रा के साथ रेखा एंड अशोक कुमार जी।

शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने। 1980 की फिल्म आशा से निकाला हुआ गीत लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल संगीत से सजाइए। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए जितेंद्रा और रीना रॉय। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल।

फाई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति से गीत को आप सुने 1992 1993 की फिल्म माशूक से, और काम की इस फिल्म में अयूब खान के साथ आयेशा झोलका। उजाला रेडियो है ये, मोहम्मद रफी साहब हिस्सा ले रहा है।

तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, हम आज की बाद। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म हवस के गीत आप सुने। 1974 की फिल्म नेहंतिन फिरन से फंतख के फिल्म हवस और संगीत से सजाए उषा खन्ना और काम किए उन दिनों इस फिल्म में अनिल धवन के साथ नीतू सिंह, बिंदु, विनोद मेहरा और विद्या सिन्हा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल है ये।

लंबी जुदाई रेशमा की आवाज। फिल्म हीरो का गीत आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल में। और अब इस प्रोग्राम में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे और ये होंगे किशोर कुमार जी की आवाज में।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayyar ho ja aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

ताले तक धुम तक ताले तक जम तक धला हम तक तक तक तक न तक नक तक धुम तक नक नक धुम तक नक नक धुम तक नक नक जम तरिता जग तरिता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेटे ताले तरिता जग तरिता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेटे जम तरिता।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनाओ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ